0: Gorka Radio.
1: Gorka Radio.
2: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।